ये कुमार जी हजुर का मुखार बिंदु बाट धेरै कुरा सुन्ने अवसर पाए। प्रभु त्यस पछि का कुरा के भए? संहार करता श्री महादेव को हालत कस्तो भयो? सती देवीले कसका गर्भमा बास लिए? श्री महादेव र पार्वती को विवाह कसरी भयो? आदि कुरा जान्न निकै उत्सुक छु प्रभु, आज्ञा हो।